0: மையல் அப்படிங்கிற படத்துலேருந்து சின்மயி குரலில் விவேகாவோட வரிகளில் அமர்கீத்தோட இசையமைப்பில் நாம் அந்த பாடல் கேட்டோம். நாம் இணைஞ்சிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சி வணக்கம் தமிழ்நாடு நிலையத்தில் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா 7:45 ஆயிட்டுருக்குங்க.
1: शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
2: तो ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके
4: सारे गुण।